0: फिक्का दरगाह सटिए मोथुका फिक्के पाए फिक्का मूर्ख आखिए पाना लहे सजाए महला पहला।
1: अंदरों झूठे पैर बाहर दुनिया अंदर फैले अठ सठ तीर्थ जे नावे उतरे नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ते पले संसार तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग से रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बार सच्चे ना हर दरबार तुपर खर्च मंगा जब देता खाहे दीवाने को कल में कहा मा तुम मेल दल लेखा पीड़ छुटे नानका जो तेल पोड़।

पौड़ी नानक अंतरा जापनी हरता के बारा बार आप कराए साक्षी फरियाद कराए मार इकना गली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिसियार आप कराए करे आप हो कैसे।

सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता तेरे अपना आप जर सर्ब कला भरपूर दिसे जत कथा नानक दसन दा।

रहाउ मरत पयाल आकाश दिखायो गोर सतगुर कृपा धारी जियो सो ब्रह्म अजोनी है पीहोनी घट पीतर देख मुरारी जियो जन्म मरण को एहो जग बपुड़ो इन दूजे भगत विसारी जियो सतगुर मिले ता गुरमत पाईए साकत बाजी हारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ना गर्व मझारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सतगुर बंधन तोड़ निरारे बहुड़ना गर्भ मझारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पहला तू प्रभ दाता दान मत पूरा हम थारे पेखारी जियो मैं क्या मांगो किश थिर न रहाई

0: बड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेकना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किछ जान ला सब के तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाए तुद घर माण महत्ता तेज अपना आप जार सर्व कला परपोर दिस है जत कता नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता
1: श्लोक पमन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिसे रात दुई दाई दाया
0: खेले सगले जगत
1: चंगियाँ या बुरियाँ या

गए मसकत काल, नानक ते मुख उजले किती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत।

सर्व सुख भोग, जहाँ जहाँ खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रचे आरे आरे। देव तेरु फतेह बिरद की बैर पंथ की जीत। श्री

सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम हे शाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उभरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस तुझ जू करी अहो रक्षा। राख लिहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दस कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्ण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी आहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जन आप सवारी। सेवकन को शिवगुन सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछनत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछनै, कट कट के पट पट की जानै। जब युद करख करा कर तारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी भूज उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरयालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको भेव न पावत भेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत न पेव। आपे अपनी बुद्ध है जेती, भरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जे रज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ फूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट भयो संक्रिय कैठा। सगरी सृष्ट दिखाई अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप सुजम पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नहय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला।
कृपा दृष्ट तन जहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह स्वय सकय न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्वठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। खड़ग के तमै शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी। सर्वठार मोह हो सहाई, दुष्ट दोख तेले हो बचाई। सवैया पाए गहे, जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं अन्यों। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मन्यों। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहे हम एक न जान्यों। श्री आसपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहियो सब तोहे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौशाड़ के, गहियो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। सगल द्वार कौशाड़ के, गहियो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज अस, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर ता पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शबद गावण आईया। शबदो ता गावह हरि केरा, मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार ओह करे तेरा, कारज सब सवारणा। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो क्यों मन हो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, कर ता तेरा सब किछ है। जिस देह सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा,
ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆ, ਘਰ ਸਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟਹੋ, ਜੇ ਸਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੁਣਹੋ ਸੰਤਹੋ, ਸਬਦ ਧਰਹੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ, ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰੀਆ, ਪੰਚ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟ ਕੁਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਤਹੈ ਸੁਖ ਹੋਆ, ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਣਹੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ

संत मनो दुत डनो एह कोटवारी मेरी दिवस रैन तेरे पाओ पलोसो केस चवर कर फेरी हमको कर तेरे दरबार पौं कहे आगे बदन पसार पूरब जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया न जाई तेरे द्वारे तुन सहज की मथे मेरे दगाई दागे हो हे सोरन मह जूझ बिन दागे पग जाई साधु होए सो भगत पछाने हर लय खजाने पाई कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार गौर दीनी बस्त कबीर कौ ले वह बस्त संभार कबीर दी संसार कौ लीनी जिस मस्तक भाग अमृत रस जिन पाया थिरता का सुहाग लिख कत हे ना छूटिए खिन खिन भूलनहार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गोर सेविया एहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवे सिफ तख समी नूर अर सौ कुर सौ चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाहां दशाह हो जिस पास बैठिया सोहिया सब ना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह हो सिर शाहां दशाह हो जिस पास

हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत षाड बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाट कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सो कहो टल गुर सेविए, अहनस सहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसाम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाहु। सजन सचा पातशाह सिर सांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाहु। सतनाम श्री वाह।

निंदक के मुख काले कीने, जन का आप सहाई। साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निरपौ पय सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए। साचा साहिब हुआ रखवाला, राख लिए कंठ लाए। निरपौ पय सदा सुख माने, नानक हर गुण गाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वत्सल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख अच्युत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई पार ब्रह्म सरनाई। चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एक लिवलाई। रहाओ राख लिए तिन रखन हार, सब ब्याद मिटाई। कोह नानक किरपा पई, प्रभ पए सहाई। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखिया, करते का होए विचारो। तेत कर गाव हो सोहिला, सिव रिहो सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहिला, हों बारी जित सोहिला, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन, देखेगा देवनहार। तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिल कर पाव हो तेल। देहो सज्जन आसी सड़िया, ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। घर घर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन। सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक, बाबा जय कर करते कीरत होए। सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ। बेसोए चस्या घड़िया पहरा, थिती बारी माहो हुआ। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल राव चंद दीपक बने। तारका मंडल जनक मोती, धूप माले आन लो पवन चवरो करे। सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती। अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही। सहस पाद बिमल नन एक पाद, गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए।
हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो आन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देह नानक सारंग को होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधु खंड लखंडा ही पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा ही कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर दंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साध न जानिया तिन अंतर हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाणे दुख जन्म मरण भव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मसकीन प्रभ तेरे हर राख राख बड़ वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे वसन सुहेला औद घटे दिन सुरै नारे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ एहो संसार बेकार संसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पिया वै एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा निज घर महल पाव हो सुख सहजे बहुर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूर अंतर जामी पुरख बिदाते शरदा मन की पूरे नानक दास यह सुख मांगे मोको कर

0: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दू गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। श्लोक
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेल सगल जगत, चंगियाईयां बुरियाईयां वाचै।

गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

0: सतगुरु जप रखे नु कर प्रगटक सुनाया, सतगुरु मिले सुख पाया, जिनके हृदय सच बसाया,
1: जिन सच्चो सच बुझाया, जिन सच्चो

0: अंड जर उपजा खाणी सेत जा सोमत जाने नानका सरा मेरा जनता हा नानक जंतु पाए कै सुमाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता बेकरनीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुआरी स्वास्थ्य तिस तबानु भग नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख निकियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान लख तप ऊपर तीर्थां सहजुग बेबाण लख सूरतन संग्राम रण मैं छुटै प्राण लख सुरति लह गया ते हन पढ़िया पाठ प्राण

तित नाम लाग ते तीस ते आवे जतीत पीसर मन वस्या सोई नाम सिमर गंगे पतामे चरण चित अमृत रसिया तित नाम गुरु गंभीर गारु मत सतकर संगत उद्धरिया सोई नाम अछल भगते पवता।

संसार किरण रब सुरतर साखे उत्तर दखन पुब देश पश्चिम जस पाखे जन्म त ऐसक अथ जित नाम हर हृदय निवासे सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन असासे पलो प्रसिद्ध ते जो तनो कल जोड़ कर त्याए ओ सोई नाम भगत पवजल हरण गुर अम

कहत माज सोद जिसे दही पात खाहे जियो। देख रूप अतनूप मोह महा मग पई, किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो। काल कलम हुकम हाथ कहो कौन मेट सके, इस बम ज्ञान ध्यान तरत हिय चाहे जियो। सत साच श्री निवास।

को कहे जियो। सुथर चित भगत हित पेख तरियो हर नाकस हरियो नख बिदार जियो। शंख चकर गदा पदम आपे आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म रखे कौन ताहे जियो। सत सा श्री निवास आदि पुरख सत।

सोरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारे जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन विसरै तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूढ़ मुग्ध सदा से पाई गुर के शब्द प्रगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विट हो वारिया सद ही